0: गुड न्यूज एफएम 105.1
1: विश्वास सुनाइबाट आउँछ गुड न्यूज एफएम रेडियो 105.1 मेगाहर्ज।

0: ています
1: プリヤスロタプラバブサリバイブルシシェクトタアトニックマーガダサクショーン・ビクター・ドワラ・リキッツ・サンデスハムロアフニー・ネパリ・バサマー・シュンナバヨ・リディオ・カリクロム・スパーク・マイ・フェイトメルビスワスマ・チャマクリアウノ・ホース
2: कार्यक्रमका बारेमा कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ जसको लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ 98 68 55 33 39 98 68 55 33 39।
1: हौस् त कार्यक्रम सुन्नु भएकोमा तपाईलाई परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनु भएको होस्। जय मसीह।
3: आजी नेनादी गुदु निच्छ्या आत्मिकी ज्याजो स्पार्क माइ फेथ जुगु विश्वास के चमक हया बिउ सक्तां तंकल की छुयागो जोई मसे जोजल बाजी अमृता महर्जन स्पार्क माइ फेथ यु जीवन या श्रृंखला भाग 33 के छि सकसित न लसकुस गबले गबले झिस सकसित तह धंगु संघर्ष या सामना या माली थाकुगु अवस्था गुगु तस्क थाकु खन्दै जब जीसँग फुक्क आशा मध्ये गल थे त्यागी जब जीसँग जीवने दक्ले अपमूल्य ब्याचुनगु वस्तु झिगु रात चिका यङ्कुगु थेजी उगुले जीसँग छुयागु थुगु नियसयाली सबी त जीसँग दाउदिया सत्य बाख्रसे दाउदिया जीवनले तदङ्गु विजय व सफलता प्राप्त यागु यी नदु कथिकी गोलियात त स्यागु इले तर तदङ्गु नुग चुया स्याग चा व पराजय या अनुभव यागु यी नदु छिगु जीवने जुया चङ्गु भाख या त थोप परिचित थे सोला यो पिनियन मेपी दाउदिया जीवने छगु नाटकीय प्रकरण व थगु सैनिक सेना या त सिक्ल चङ्गु थुगु गृह शिविर तोता पलस्ती शत्रु तेगु लिउलिउ हुने त आदेश पिल इपी हुने ढुङ्गा अभिमेलिकी तिसँग सिक्ल आक्रमण याद नापाङ्गु समुएल स्विगु अध्याय सोगु पद के धाटकु अनलि दाउद वया मनु त सिक्ल ठ्यो भने इम्स व सहर नास जुगु व इम त इमी मिसत व मस्त सकसित यङ्गे ढुङ्गु गो खन दाउद थगु सहरिया त सुरक्षित तोता तदङ्गु डोङ्कल नापाङ्गु समुएल स्विगु अध्याय पेगु पत्के हटाउ डो अले इपी तस्क खोल ठुली अप खोल कि इम्के शक्ति हे मध्ये आउन अभिमेलिक दाउद या निम कलापिन त थ नाप यङ्कु गु ख गुकि वया यम कला अभिगेल न दुगु ख दाउद थगु व्यक्तिको छेन छेतिया दुख जक्क मखु दाउद त्या सक्ने मनु त दुखित हो क्रोधित ड्रया चङ्गु ख इमे क्यापिन त कै दे यङ्कु गुणी इमे तस्क नुग मछिङका दाउद या त लो त के का स्यागु खला त वयागु जीवने थो तस्क तनापूर्ण इले दाउद थ परमेश्वर परम प्रभु के शक्ति माला दिल नापाङ्गु समुएल स्विगु नेगु च्याकु पत्के धाटौ दाउद अभिमेले क्या पुजारी अभि या थार या त धाल पुजारी या भिङ्गु श्रुति काप या ल जिथा हजी अले अभि या थार वो हयाबिल अनलि दाउद परमेश्वर के यन छु जी उपी लुई त याइपी मनुते त लिउलिउ हुनेला छु जी इम त नाप्ला के फैला परम प्रभु वया त लिसबिल ज्यू छ इम त लिउलिउ हु छ इम त नाप्ला का फुक्क जो ना यङ्कुपी त छुटे या ना हजी पृथ्वी दक्ले ख्युङ्गु इले जिस न्योने फैगु दक्ले महत्वपूर्ण पला नापाङ्गु पला धैगु परमेश्वर या सरणे मुनि गुख वेक या मतिना छिगु अस्तित्व या सन्तुष्टि याके बी वेकल जित सान्त्वना दवि अले वेक पाखे मागु बुद्धि माला दिस ताकि जिस जी दुने लाना चुङ्गु अवस्था या त सहया भई निगु गरन्थे छगो यो सङ्गु पत्के धाटगुदो जी प्रभु येशु ख्रिस्ट या परमेश्वर व बाया त जीसँग सुभावी हेमा वेकय या दया माया दुम व फुक्क कथा या सान्त्वना बियादी म परमेश्वर ख यो पिन्जेन मेपी जीसँग दोङ्के बले उखिया

0: आगु बुद्धि माला दिस ताकी चिस झी दुने लाना चुङ्गु अवस्था या त सहया भई निगु करन्थे छगो यो सङ्गु पत्के धाटगुदो झी प्रभु येशु ख्रिस्ट या परमेश्वर व बा या त झिस सुभावी हेमा वे कहे या दया माया दुम व फुक्क कथा या सान्त्वना ब्यादी म परमेश्वर ख यो पिन ये नमिपिन झिस दुङ्के बोले उखिया नीति झिस तस्क मु पुले मारे परमेश्वर चित तस्क दया याना दिन अले वो चित क्षमा व सान्त्वना बित थगो लाल होना दिल दाऊद उबले हे परमप्रभु या आज्ञा माने याना अभिमेलिक ते त लिउलि हुन व थ सेना पाखे पेस म मनु त थ ना पहल मिश्र या छम दास आके मुङ्कुको जानकारी या माध्यम दाऊद थगो नगरे आक्रमण या त या पि सक्ने अभिमेलिक कि ते त जुना क्या त सक्षम जुल नापाङ्गु समुएल सुईको अध्याय च्याको गुगु पटके धाटगुदो दाउद थ निमकलापी नाप अभिमेलिक कि तेस यङ्कुकु सक्ने मनु त फुक्क वस्तु या त छुटे या नाल इम्स लाका यङ्कुकु फुक्क सामान क्यापि व इपि थगु निधि यङ्कुकु सामान नाप फुक्क दाउद लित हल थोन छु न तो मफ्यु यो पिनियन मिपि अवस्था न्याब्ले बामलागु जुई मुखु छिगु निराशा छुगु इले छिगु दुन नुग्ल निसे परमेश्वर या त प्रार्थना याना दिस वयागु सान्त्वना वो वयागु बुद्धि न माला दिस वेकल छि त छु याए त दया जुल वो पालन याना दिस अले दाउदिया विषय या गु उद्धार या त छि अवश्य हे खनि परमेश्वर यो वचन येना दिगुनि छि सकसित न परमेश्वर सुभावीमा जय मसी छिम्स नकतिन हे जक बाइबलीय प्रभावशाली शिक्षक व आत्मिकी लपु केनादी म सोमन भिक्टर चोयादीको हसना जिगु हे नेपाल भाषाया रेडियो ज्याजो स्पार्क माई फेथ जिगु विश्वास के चमखया बिउ बारे छिके छु प्रतिक्रिया सुझाव दुसा स्वापु तया दिफै उकिया नीति जिमके जिमगु मोबाइल नम्बर 2 98 65 33 39 98 65 33 39 कासा ज्याजो नेना दिगुनी छित यकु यकुए सुब्या परमेश्वर छित सवाबीमा जय मसी
1: म कलाकार आशा खड्का तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ गुड न्यूज एफएम 105.1 MHz म पनि सुन्दैछु तपाईँहरू पनि सुन्नुहोस् है।